गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। आज फ्राइडे है, फंडे है, तो चाय थोड़ी एक्स्ट्रा, स्माइल थोड़ी बड़ी और मूड फुल ऑन पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि वीकेंड बस दरवाजे पर दस्तक देने खड़ा ही है। और फ्राइडे का मतलब सिर्फ वीकेंड का इंतजार नहीं होता है, बल्कि पूरे वीक की मेहनत को सेलिब्रेट करना भी होता है। मुस्कुराइए, क्योंकि आज फ्राइडे फंडे है। यू नो व्हाट, टेंशन को ड्यू पर भेजिए और अपने स्माइल को ड्यूटी पर लगाइएगा, क्योंकि आज के दिन ऐसे मुस्कुराते हुए हंसते खेलते हमें गुजारना है। बाकी तो बहुत सारी बातें होगी आज के शो में, बहुत सारी मुलाकातें होगी, हसीन नगमों का साथ भी होगा, लेकिन उसके पहले तुमची मॉर्निंग कोट करायला सुपर डुपर हिट गाने चीज सोबत तुमच्या सोबत असणारच आहे, क्योंकि आज आहे फ्रायडे फंडे, म्हणजे फन खूप होणार आहे आज आपल्या शो मध्ये। तुमचं काय प्लॅन्स आहेत आता वीकेंडचे, सुरू होणारे वीकेंडचे, जरा मला कळवा। डीएम करा इंस्टावर आरजे अदनान या इंस्टा पेजवर। आजचं दिन विशेष काय हे पण एक महत्त्वाचं आहे ना, तेही तुम्हाला कळेल बट थोड्या वेळानंतर। आता तर सध्या शो सुरू झाला, खूप काही गप्पा गोष्टी होणार आहेत बट थोड्या वेळानंतर। तोपर्यंत एन्जॉय दिस ब्युटिफुल ट्रॅक अँड स्टे ट्यून विथ आरजे अदनान इन द शो।

किस्सों का कारवा विद आरजी अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। स्कूल में हम सबके पास कोई ना कोई एक ऐसा टीचर जरूर होता है जिसका पढ़ाया हुआ चैप्टर शायद हम भूल जाए, लेकिन उससे कही हुई एक बात पूरी जिंदगी याद रहती है। एक लड़का था, पढ़ाई में बहुत साधारण, ना क्लास का टॉपर, ना किसी प्रतियोगिता का स्टार, यानी कि मेरे जैसे ही समझिएगा। कई बार कम नंबर आते तो लोग मजाक भी उड़ाते। धीरे धीरे उसे भी लगने लगा कि शायद वो दूसरों जितना अच्छा नहीं है। एक दिन परीक्षा के नतीजे आए, फिर से कम नंबर, पूरी क्लास के सामने उसे बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसकी क्लास टीचर उसके पास आई। उन्होंने डांटा नहीं, ये कहा कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, हर बच्चा किसी न किसी चीज में अच्छा होता है, तुम्हें बस अपनी जगह ढूंढनी है। उस दिन शायद वो लड़का उस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन उसने हार मानना छोड़ दिया। पढ़ाई के साथ साथ उसने अपनी दूसरी खूबियों पर भी ध्यान देना शुरू किया। बोलने में अच्छा था, लोगों से जुड़ने में अच्छा था, और धीरे धीरे उसी हुनर ने उसकी पहचान बना दी। सालों बाद जब वो अपनी जिंदगी में कुछ बन गया तो एक दिन उसी स्कूल गया, उस टीचर से मिला। टीचर ने मुस्कुराकर पूछा, पहचाना मुझे? लड़के ने कहा, मैडम अगर उस दिन आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया होता तो शायद मैं खुद पर कभी भरोसा नहीं कर पाता। सच तो ये है दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ी बड़ी सलाह नहीं चाहिए होती। कभी कभी किसी टीचर का एक छोटा सा विश्वास एक बच्चे की पूरी दुनिया बदल देता है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी टीचर है तो आज उन्हें एक थैंक यू जरूर कहिए, क्योंकि कुछ हीरो किताबों में नहीं क्लासरूम में मिलते हैं। किस्सों का कारवा विद आरजी अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

Let's talk about healthy life. You are listening MGM 90.8 FM. बंदे का नाम है अदनान और आपकी मॉर्निंग गुड करने मैं आता हूँ. और अभी वक्त है अपने हेल्दी लाइफ के बारे में जानने का. टॉपिक आज का बहुत बढ़िया है, ऑफिस वर्कर्स के लिए 3 मिनट स्ट्रेचिंग रूटीन. अब स्ट्रेचिंग क्या होता है? अपनी मसल्स और जॉइंट्स को धीरे धीरे खींचना और मूवमेंट देना ताकि बॉडी फ्लेक्सिबल रहे, स्टिफनेस कम और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहे. तो दोस्तों, अगर आप दिन भर ऑफिस की कुर्सी से चिपके रहते हैं तो ये बात आपके लिए है. लगातार बैठने से ना तो गर्दन अकड़ जाती है, ये आपने महसूस तो किया ही होगा. कंधे बहुत भारी लगने लगते हैं यार, ये तो मेरे साथ अक्सर होता है. और कमर दर्द, उसका तो क्या ही बोले. लेकिन इससे बचने के लिए बस आपको 3 मिनट की स्ट्रेचिंग काफी हो सकती है. पहला मिनट, गर्दन को धीरे धीरे दाएं और बाएं घुमाइए. दाएं और बाएं समझते हो, राइट और लेफ्ट. फिर ऊपर और नीचे मुंह कीजिए. दूसरा मिनट, कंधों को 10 बार आगे और 10 बार पीछे घुमाइए, इससे शोल्डर टेंशन कम होता है. तीसरा मिनट, खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाएं और बॉडी को हल्का सा स्ट्रेच कीजिए. फिर कमर को धीरे से दाएं और बाएं कीजिए, यानी कि राइट और लेफ्ट. बस ये सिर्फ 3 मिनट का काम है. ये छोटी सी आदत आपको ज्यादा एक्टिव, फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करा सकती है. और याद रखिए, बॉडी भी मशीन की तरह होती है. अगर उसे रेगुलर मूव नहीं करोगे तो वो भी जाम हो जाएगी, उसे जंग लग जाएगा. हर घंटे में 2 से 3 मिनट का ब्रेक और थोड़ी स्ट्रेचिंग आपकी हेल्थ के लिए एक छोटा सा लेकिन पावरफुल इन्वेस्टमेंट हो सकता है. सो ट्राई कीजिएगा और हेल्दी रहिएगा. बाकी सुनते रहिए.

0: मॉर्निंग, वेलकम बैक एंड लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ वेल तो जिंदगी ऑल इज वेल। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और अपने साथ है डॉक्टर मानसी करसगांवकर, लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड HOD डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी MGM यूनिवर्सिटी। सो मैम, मेरा आज आपसे सवाल ये है, डिप्रेशन में जाने के रीजंस क्या हो सकते हैं?
1: काफी सारे रीजंस है वैसे तो, बट ब्रॉडली अगर देखा जाए तो हम उनको ब्रैकेट कर सकते हैं ब्रॉडली चार चीजों में। जैसे एक हो गया बायोलॉजिकल फैक्टर, कि जैसे उनके अंदर के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या उनकी जो ब्रेन केमिस्ट्री है उनमें बदलाव आना, वो एक बायोलॉजिकल फैक्टर में आता है। दूसरा फैक्टर आ सकता है कि जेनेटिक, क्योंकि बहुतों में ये जेनेटिक भी होता है कि उनके पेरेंट्स को डिप्रेशन रहा हो या ग्रैंड पेरेंट्स को रहा हो या और किसी रिलेटिव को रहा हो। तो पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर, दूसरे हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे नेगेटिव थिंकिंग का होना, जैसे कुछ हो जाने के बाद हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी के डिस्कशन से या हमारा कॉन्फिडेंस मान लो लो हो जाता है साइकोलॉजिकल लेवल पे, फिर हम कंफ्यूज होने लगते हैं, फिर हमको इन्फीरियोरिटी भी हो सकती है वो सोच के, नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो कि साइकोलॉजिकल इन नेचर है, तो दूसरा कॉज या फैक्टर वुड बी साइकोलॉजिकल। तीसरा हो सकता है, देखिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे एनवायरमेंट का स्ट्रेस, जैसे वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो गया, कि अगर टॉक्सिक वर्क प्लेस है, आपके कलीग्स हैं या आपके बॉस है वो अगर कॉन्स्टेंटली आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, विच इज वेरी कॉमन इन दीज डेज, यू नो, या उनका बिहेवियर आपके प्रति अच्छा नहीं है, टॉन्टिंग बिहेवियर है, तो ये हो गया एनवायरमेंट का। कभी कभी क्या होता है फैमिली में भी टॉन्टिंग बिहेवियर बहुत होता है फैमिली मेंबर्स का, जैसे सिबलिंग्स का होगा या हस्बैंड वाइफ के बीच होगा या सास ससुर, है ना, ऐसे फैमिली मेंबर्स भी हमको टॉन्ट करते हैं कभी कभी, तो ये एनवायरमेंट है। कभी कभी फाइनेंशियल लॉसेस लोगों को हो जाते हैं, तो ये सारे एनवायरमेंट के फैक्टर्स हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि क्रॉनिकली इल होते हैं, कि बहुत साल से, जैसे कोई बेड रिडन हो या कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, उनको फिजिकल एलिमेंट्स हो, कोई मोडालिटीज हुई हो, तो वो भी एनवायरमेंट का ही भाग होता है। और चौथा है लाइफस्टाइल फैक्टर, जो कि बहुत ज्यादा चिंता का विषय है हमारे लिए अभी। और अब लाइफस्टाइल के फैक्टर्स में आता है जैसे पुअर स्लीप, जैसे आजकल हम जल्दी नहीं सो रहे हैं और हम जितना हमको सोना चाहिए उतना टाइम नहीं सो पा रहे हैं। फिर सब्सटेंस अब्यूज, जैसे अल्कोहल का सब्सटेंस लेना, ये बहुत एक कॉमन हो गया है, जैसे स्मोकिंग हो गया, टोबैको हो गया, ऐसे बहुत सारे जो सब्सटेंस यूज होता है, तो ये भी लाइफस्टाइल फैक्टर्स में आते हैं। तो हमने जो चार चीजें अभी डिस्कस की वो है बायोलॉजिकल रीजंस, साइकोलॉजिकल रीजंस, एनवायरमेंटल रीजंस एंड लाइफस्टाइल रीजंस।
0: सो मैम ने बताई हुई चीजें फॉलो कीजिएगा, ये सब चीजें याद रखिएगा। एंड तुमच्या मनात काही प्रश्न असेल तर आम्हाला व्हाट्सअप करा 9359320080। सो बी सेफ, कीप मुस्कुराना एंड स्टे ट्यून्ड।

फरमाइश फरमाइश और फरमाइश आपकी फरमाइश है सराखों पर. यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM. और इस वक्त ना तो मैं आपकी फरमाइश पूरी करता हूँ. तो आज के गाने की फरमाइश आई है सतीश रुद्रवार जी की तरफ से इस गाने के लिए.

इस गाने का मतलब क्या बताया गया कि दूर से पहाड़ खूबसूरत लगते हैं लेकिन पास जाने पर बस एक पत्थर के चट्टान होते हैं। दुख और सुख की एकदम मिक्स स्टोरी है ये गाना। ये बताता है कि दुख के पीछे ही सुख छुपा होता है, बस देखने का नजरिया चाहिए। इस गाने को जसपाल सिंह ने अपनी आवाज दी थी। ये गाना जीवन के हर एक दृष्टिकोण और मुश्किल परिस्थितियों में भी हमें पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिविटी खोजने की

एक गलती इंसान को बहुत पछताने पे मजबूर कर देती है, चाहे फिर वो जिंदगी की हो या फिर गलत रास्ते की हो। आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ MGM 90.8 FM आणि आपल्या छत्रपती संभाजीनगर मध्ये चुकीच्या रस्त्याने जाणारे लोक खूप आहेत, जहाँ लिखा होता है, चाहे किसी के दिल में जाने का रास्ता हो या फिर किसी गली में जाने का रास्ता हो, वहां पर अगर नो एंट्री दिख रही है तो एंट्री मत कीजिएगा। लेकिन अपने शहर के कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है, चाहे फिर दिल हो या फिर रास्ते हो, दोनों जगह पर नो एंट्री में एंट्री कर ही देते हैं। एंड ऐसे ना तो रॉन्ग साइड से जाने वाले, नो एंट्री में जाने वाले लोगों के ऊपर ट्रैफिक पुलिस एक्शन ले रही है। अब तक ना तो 900 से ज्यादा रॉन्ग साइड और नो एंट्री में जाने वाले लोगों पर फाइन लगाया है और 6 लाख से भी ज्यादा फाइन वसूल किया है। आणि ही मुहिम ना तर आपल्या शहरातील जे महत्त्वाचे चौक तिथे सुरू आहे, मोंडा नाका, सीडी चौक, 7 हिल, आकाशवाणी, जळगावटी पॉइंट, API कॉर्नर, हायकोर्ट सिग्नल, सेशन कोर्ट सिग्नल, 12 भाई ताजिया, रंगार गली, मिलिन चौक, नगर नाका, महावीर चौक, ओसिस चौक आणि वाळूस गाव, या ठिकाणी ना ही मोहीम सुरू केलेली आहे। आणि जर तुम्ही रॉंग साइड ने गाडी चालवली तर प्रॉब्लेम तुम्हालाच होणार आहे, ट्रॅफिक जाम होतोय। और कुछ कुछ लोग तो इतने ऍटिट्यूड में रॉंग साइड से गाडी चलाते हैं जैसे कि एकदम सही तरीके से गाडी चला रहे हो, और अगर किसी ने टोका ना तो फिर उनके साथ वो झगड़ा करते, भाई तेरे बाप करोड़ है के, डायरेक्ट ऐसा कहते। जो रॉंग साइड से गाड़ी चलाते हैं ना, उसके बाप करोड़ होगा वो। जो समझदार इंसान होता है वो ऐसे रॉन्ग साइड से तो गाड़ी नहीं चलाता है। बाकी आप तो समझदार हो तो देखिएगा आपको राइट साइड से गाड़ी चलाना है या फिर रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाना है, रूल फॉलो कीजिएगा, ट्रैफिक अपने आप कम होगा, समझे? स्टे ट्यून्ड।

आज सुबह एक बहुत अजीब सा ख्याल आया, बहुत मतलब बहुत ही अजीब सा। मैं सिर्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 FM। ख्याल कुछ ऐसा था कि सोचिए अगर बचपन बोल सकता तो शायद वो ऐसा कहता, मुझे बड़ा होने की इतनी भी जल्दी नहीं थी, मुझे भी स्कूल की घंटी सुननी थी, मुझे भी बारिश में कागज की कश्ती चलानी थी, मुझे भी दोस्तों के साथ बेवजह हंसना था, लेकिन किसी ने मेरे हाथ में खिलौने की जगह काम थमा दिया। दुनिया में दो तरह की सुबह होती है, एक वो जहाँ बच्चा उठकर स्कूल की तैयारी करता है और एक वो जहाँ बच्चा उठकर काम पर जाने की तैयारी करता है। दोनों की उम्र एक ही होती है, लेकिन

कहानी बिल्कुल अलग। 12 जून यानी कि आज का दिन वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये दिन हमें याद दिलाता है कि बचपन कोई लग्जरी नहीं, हर बच्चे का हक है। और शायद सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि एक बच्चा काम कर रहा है, सबसे बड़ा दुख ये है कि धीरे धीरे हमें उस मंजर की आदत हो गई है। सिग्नल पर फूल बेचता बच्चा, होटल में बर्तन साफ करता बच्चा, गैरेज में काम करता हुआ बच्चा, ये तस्वीरें हमें अब हैरान नहीं करती, लेकिन हैरान करनी चाहिए। क्योंकि जब एक बच्चा अपने सपनों की उम्र में जिम्मेदारियां उठाने लगे तो समाज को खुद से सवाल पूछना चाहिए। आज एक छोटी सी बात याद रखिए, हर बच्चा जो काम कर रहा है वो मजदूर पैदा नहीं हुआ था, वो भी किसी सपने के साथ पैदा हुआ था। और उम्मीद करता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब किसी बच्चे से ये ना पूछना पड़े कि तुम क्या काम करते हो, बल्कि ये पूछा जाए बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। सो आज है वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे। स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: अक्सर हम रोते हैं कि यार हमारे बाल टूट रहे, कैसा होगा यार।
1: बहुत सारे लोग ना हेयर प्रॉब्लम से परेशान है, लेकिन इससे ही ना तो आप हजारों रुपए कमा सकते हो। जी हाँ, एक बिजनेस आइडिया बताओ आपको। You are listening MGM 90.8 FM. एक चीज मैंने बचपन में नोटिस की थी, जब मेरी मम्मी ना तो अपने बाल बनाती थी तो जो टूटते हैं ना बाल, उसे एक कैरी बैग में जमा करके रखती थी। और आज भी बहुत सारे इंडियन फैमिली में ना तो ये एक रिचुअल चलता ही आ रहा है। इसके पीछे एक रीजन था। महीने में एक बार ना तो हमारे गली में एक बंदा आता था, केसन और फुगे, केसन और भांडे कुछ इस तरीके से वो चिल्लाता था। और फिर गली की जो भी लेडीज थी ना, तो एक महीना जो बाल उन्होंने जमा किए है वो उसे ला कर देते थे, उसके बदले फिर कुछ वगैरह खरीदी करते थे। इस तरीके का ये जो ट्रेंड है ना, तब से लेकर आज तक अब सिटी में भी आ चुका है, सब तरफ चल रहा है। और यू नो व्हाट, एक रिपोर्ट के मुताबिक ना 1 किलो बाल की कीमत है 6,000 रुपए। अगर आपके पास भी 1 किलो बाल हो गए तो आप 6,000 रुपए कमा सकते हो। मतलब आपके सर पर ना हो तो उसकी कुछ कीमत नहीं है, अगर टूटे हुए हो ना, आपने एक जगह जमा की है तो उसकी कीमत है वो 6,000 रुपए। तो कौन कहता है कि यार बाल से पैसा नहीं कमाया जाता है। आई नो बाल जाने के बाद थोड़ा टेंशन तो आता है, लेकिन इनकम भी हो रही है ना, ये भी एक है भाई। खैर, दुनिया में कब कहां किस तरीके से पैसा कमाया जाए ये किसी को पता ही नहीं है, बस थोड़ा दिमाग होना चाहिए और एक नया बिजनेस आइडिया निकल जाता है। अब ये बात सुनकर बहुत

सारे लोग सोच रहे होंगे, यार ऐसा कौन करता है। दीदी और आंटी आप हंसिए मत, आप भी यही करते हो, आपके भी घर पर है ना ऐसे, आपने एक कैरी बैग में अपने बाल जमा करके रखे, केसान और फुगे अठोते नहीं लान पड़ी। भाई आइडिया तो अच्छी है, पैसा भी बहुत अच्छा मिलेगा। खैर स्टे ट्यून्ड।

0: ऑन MTM 90.8 FM।
1: किसी से बात कर रही हो तो पहले कैसे लेटर लिखना पड़ते थे, एक वेटिंग लिस्ट में रुकना पड़ता था एसटीडी पीसीओ के, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। तो सोशल मीडिया के जमाने का फायदा उठाते हैं और हम सभी लोग ना तो 24/7 एक साथ कनेक्ट रह सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है RJAdnan। आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ कहना हो, आपको दिल की बात शेयर करनी हो, हैशटैग आपको कोई नहीं सुन रहा हो तो मेरी जान, मैं हूं आपको सुनने के लिए और आपके प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए। देखो मैं आपको जज नहीं करूंगा, लेकिन आपके दिल में जो बात हो, मन हल्का करना हो, तो आप झिझक मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। आपकी बातें मेरे दरमियान ही रहेंगी और वो कहीं और जाएंगी नहीं। बस मन हल्का होना बहुत जरूरी है। आज के वक्त में क्या है पता है क्या, सुनने वाले बहुत कम है। हमें बताना तो बहुत कुछ होता है लेकिन सुनने वाला कोई मिलता ही नहीं है। आर्ट ऑफ लिसनिंग कहीं दिखाई नहीं देती है। हर किसी को कुछ बताए तो वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देता है। भाई हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस सुन के ले यार तू। तो वही सुनने का काम मैं करता हूँ ना, आपका भाई आपका दोस्त बनकर अदनान का वही काम है। सो बेझिझक कॉल कीजिएगा 8421247339 इस नंबर पर। नंबर फिर से एक बार सुनिए 8421247339। इसी के साथ आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हो RJAdnan इस इंस्टा पेज पर। अब इंस्टा पर आए गए ना तो वहां पर एक ग्रीन कलर का बटन है जिसको फॉलो बटन कहते हैं, तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो कर सके। वहां पर भी मैं आपको ना तो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकूं। सो इतनी दरख्वास्त है कि फॉलो भी कीजिएगा और अपनी बातें भी शेयर कीजिएगा। वादा करता हूं कि सुकून के साथ सोल्यूशन भी आपको मिल ही जाएगा। बाकी आपका प्यार बरकरार रखिए और सुनते रहिए MTM 90.8 FM। All is well. RJAdnan का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो ऑन MTM 90.8 FM।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: जय राम जय।
1: भैया क्या चाय कड़क है ना?
0: अरे साहब जी 90.8% चाय कड़क है।
2: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: जयराम जय।
1: भैया क्या चाय कड़क है ना?
0: अरे साहब जी 90.8% चाय कड़क है।
2: नमस्कार, छत्रपती संभाजीनगर
3: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा। आप सभी को इस सुहानी शाम में दिल से स्वागत करती हूं मैं। शाम का समय दिन भर की भागदौड़ के बाद थोड़ा रुक कर खुद को महसूस करने का समय होता है। ये वो पल है जब हम अपने काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों से कुछ देर का विराम लेकर अपने परिवार, दोस्तों और अपने मन के करीब आ सकते हैं। आज की इस खूबसूरत शाम में आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि जीवन में छोटी छोटी खुशियों को इम्पोर्टेंस देना सीखो। कभी एक मुस्कान किसी अपने का साथ या एक प्याली चाय भी पूरे दिन की थकान दूर कर सकती है। हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है, इसलिए बीते हुए पलों से सीखे और आने वाले कल में उसे पॉजिटिव तरीके से यूज करे। अगर आपका दिन अच्छा रहा है तो उसके लिए आभार व्यक्त करे और अगर थोड़ा कठिन हो तो याद रखिए कि हर शाम एक नई सुबह का मैसेज लेकर आती है। चुनौतियां हमेशा स्थायी नहीं होती, लेकिन उससे मिली सीख हमेशा हमारे साथ रहती है। तो आइए इस शाम को सुकून, मुस्कान और उम्मीद के साथ बिताइए। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताइए, अपने मन पसंदीदा गाने सुनिए, खुद को थोड़ा आराम दीजिए। इन्हीं खूबसूरत बातों के साथ आगे बढ़ते हैं शो में और सुनते हैं कुछ बेहतरीन गाने ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

मैं आपसे एक छोटी सी लेकिन बहुत प्यारी बात शेयर करना चाहती हूँ। दिस इज आर जे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजीएम 90.8 FM। हम अक्सर फूल खरीदते हैं किसी खास मौके पर, किसी अपने को खुश करने के लिए या किसी को अपनी भावनाएं बताने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी अपने लिए फूल खरीदे हैं? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन खुद के लिए फूल खरीदना अपने आप को ये बताने का एक खूबसूरत तरीका है कि आप भी खास हैं। हमें अक्सर लगता है कि खुशी पाने के लिए किसी और का इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन कई बार छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे दिन को बेहतर बना सकती है। इमेजिन कीजिए, दिन भर की भागदौड़ के बाद आप घर लौट रहे हैं, आपके कमरे में ताज़े फूलों की खुशबू आपका स्वागत कर रही है। ये सिर्फ फूल नहीं होते बल्कि खुद के प्रति थोड़ी भावनाएं, थोड़ी फीलिंग्स, थोड़ा प्यार और ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट का छोटा सा एहसास होता है। साइकोलॉजी भी मानती है कि प्रकृति से जुड़े चीज़ें जैसे फूल पौधे हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं और ऑफ कोर्स रंग बिरंगी फूल तनाव को कम कर सकते हैं।

है और मन में पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं। तो अगली बार जब आप फूलों की दुकान के आसपास से गुजरे तो याद रखिए, फूलों को खरीदने के लिए किसी खास वजह का इंतजार मत कीजिए, एक छोटा सा गुलदस्ता अपने लिए भी खरीद लीजिए, क्योंकि खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी भी हमारी अपनी है। याद रखिए, खुद से प्यार करना कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक ज़रूरत है, और कभी कभी एक छोटा सा फूल भी ये याद दिला सकता है कि आप अपने लिए काफ़ी है। तो मुस्कुराते रहिए एंड ऑफकोर्स सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

जिंदगी की भाग दौड़ में हम अक्सर अपने काम, जिम्मेदारियां और टारगेट्स में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि छोटी छोटी खुशियों को जीना भूल जाते हैं। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजे 90.8 FM। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी कभी एक छोटी सी ट्रीट भी आपका पूरा मूड बदल सकती है। और अगर बात हो पानी पूरी की तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पानी पूरी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, बल्कि एक एहसास है। वो खट्टा मीठा पानी, कुरकुरी पूरी और हर एक बाइट के साथ मिलने वाला मज़ा कुछ मिनटों के लिए सारी टेंशन भुला देता है। हफ्ते में एक बार अपनी पसंद की पानी पूरी खाना खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड देने जैसा है। पूरे हफ्ते मेहनत करने के बाद अगर आप अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल कर दोस्तों या परिवार के साथ पानी पूरी खाने चले जाए तो यकीन मानिए मूड अपने आप ही फ्रेश हो जाएगा। खुश रहने के लिए हमेशा बड़ी वजहों की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सड़क किनारे खड़े होकर पानी पूरी का मज़ा लेना, दोस्तों के साथ हंसना और उस पल को खुलकर जीना भी काफ़ी होता है। बेशक हर चीज़ की तरह बैलेंस ज़रूरी है, लेकिन कभी कभार अपनी मन पसंदीदा चीज़ का आनंद लेना भी ज़िंदगी को थोड़ा मज़ेदार बनाता है। तो इस हफ्ते अगर आपका मूड थोड़ा डाउन हो या बस खुद को खुश करना हो तो अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, एक प्लेट पानी पूरी का मज़ा लीजिए। सुनते रहिए एमजे 90.8 FM, साथ है तो बात है।

वक्त है एक ऐसे गाने की बात करने का जो दिलों को सालों बाद भी उसी तरह से छू जाता है। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजी 90.8 FM। मैं जिस गाने के बारे में बात कर रही हूँ, उस गाने का नाम है आजा माहिया। इस गाने की सबसे खूबसूरत बात है इसकी सादगी। इसमें प्यार को किसी बड़े या मुश्किल शब्दों में नहीं, बल्कि बहुत ही आसान और दिल से निकले हुए जज्बातों में पेश किया है। जब हम इस गाने को सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सबसे खास इंसान को अपने दिल की बात कह रहा हो। आजा माहिया की ये बोल इंतजार, प्यार और अपनेपन की भावना को और भी खूबसूरत तरीके से बयां करते हैं। ये सिर्फ एक रोमांटिक गाना नहीं है, बल्कि उस एहसास की कहानी है जब किसी की मौजूदगी आपकी खुशी का कारण बन जाती है। गाने में एक मासूमियत है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। शायद

सुन रहे हैं एमजीएम 90.8 एफएम और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर महिला की सेहत से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि आपकी पीरियड सिर्फ महीने का एक सामान्य हिस्सा नहीं है बल्कि आपकी सेहत के बारे में बहुत कुछ बताता है। जी हाँ, पीरियड्स हमारे शरीर का एक तरह का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड होता है। उनका समय पर आना, फ्लो का सामान्य होना, हर महीने लगभग एक जैसा पैटर्न होना इस बात का संकेत हो सकता है कि शरीर के हार्मोन्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अगर पीरियड्स बार बार बहुत जल्दी या बहुत देर से आते हैं, फ्लो अचानक बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो जाए, दर्द पहले से कई ज़्यादा होने लगे, तो ये शरीर का एक संकेत हो सकता है कि उसे थोड़े ध्यान की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बदलाव किसी बीमारी की निशानी है। कई बार तनाव, नींद की कमी, खान पान में बदलाव या व्यस्त जीवन शैली भी पीरियड्स को प्रभावित कर सकती है, लेकिन अपने शरीर के इन संकेतों को समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। अपने पीरियड्स का रिकॉर्ड रखना एक अच्छी आदत हो सकती है। इससे आप अपने शरीर के पैटर्न को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और किसी भी बड़े बदलाव पर समय रहते ध्यान दे सकते हैं। हम अक्सर अपनी सेहत की बात तब करते हैं जब कोई परेशानी सामने आती है, लेकिन असली समझदारी ये है कि अपने शरीर की छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें और पीरियड्स उन इम्पॉर्टेंट बातों में से एक है जो हमें अपनी सेहत के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो अपने शरीर की बात सुनिए, उसका सम्मान कीजिए एंड ऑफ कोर्स अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए और इसी इम्पोर्टेंट मैसेज को हर किसी के पास पहुंचाइए। और सुनते रहिए एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: देखते देखते हमारी आज की ये खूबसूरत शाम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। उम्मीद है कि आपने हमारे साथ बिताए इन पलों का भरपूर आनंद लिया होगा और आज के गाने, बातें और छोटे छोटे विचार आपके दिल को छू पाए होंगे। दिस इज आर जे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजे 90.8 FM। जिंदगी हर दिन हमें कुछ नया सिखाती है, कभी खुशियों के रूप में तो कभी अनुभव के रूप में। इसलिए हर दिन को एक मुस्कान के साथ स्वीकार कीजिए और हर शाम को आभार के साथ विदा कीजिए। आज जब आप अपने दिन को ख़त्म करें तो कुछ पल खुद के लिए भी निकालिए। अपने मन को शांत कीजिए, दिन भर की अच्छी बातों को याद कीजिए और कल के लिए एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि हर रात के बाद एक नई सुबह आपका इंतज़ार करती है। अगर आज का दिन शानदार रहा तो उसकी खुशी अपने साथ लेकर जाइए और अगर थोड़ा दिन मुश्किल रहा हो तो उसे यही छोड़ दीजिए। कल एक नया मौका लेकर आएगा, नई ऊर्जा लेकर आएगा और नई मुस्कान भी लेकर आएगा। आपका साथ, आपका प्यार और आपका भरोसा यही हमारे इस सफ़र को और भी खास बनाता है। इसी के लिए दिल से शुक्रिया कहती हूँ मैं आपसे। अब मुझे दीजिए आप इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक नई शाम में, नए गानों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए एमजीएम 90.8 FM। साथ है तो बात है।
1: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचे, मग एमजीएम युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
2: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड बीबीए एलएलबी आणि 15 नंतर 3 वर्षांचा एलएलबी हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी एलएलएम मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। या सोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
1: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च एमजीएम युनिव्हर्सिटी किंवा विजिट mgmu.ac.in।
3: फक्त इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय,
4: मग निवडा एमजीएम विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग। सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन।
3: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
4: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन्स, इंडस्ट्री विजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप्स।
3: लिमिटेड सीट्स, आजच एमजीएम विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 9890 71 78 44।
5: ऍडमिशन ओपन एमजीएम युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर HSC, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, सायबर सिक्युरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग, VLSI डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, रोबोटिक्स अँड ऑटोमेशन। फॉर ऍडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टॅक्ट 9371714253 और विजिट MGM कॅम्पस, N6 CIDCO, छत्रपती संभाजीनगर।

एक गलती इंसान को बहुत पछताने पे मजबूर कर देती है, चाहे फिर वो जिंदगी की हो या फिर गलत रास्ते की हो। आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ MGM 90.8 FM आणि आपल्या छत्रपती संभाजीनगर मध्ये चुकीच्या रस्त्याने जाणारे लोक खूप आहेत, जहाँ लिखा होता है, चाहे किसी के दिल में जाने का रास्ता हो या फिर किसी गली में जाने का रास्ता हो, वहां पर अगर नो एंट्री दिख रही है तो एंट्री मत कीजिएगा। लेकिन अपने शहर के कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है, चाहे फिर दिल हो या फिर रास्ते हो, दोनों जगह पर नो एंट्री में एंट्री कर ही देते हैं। एंड ऐसे ना तो रॉन्ग साइड से जाने वाले, नो एंट्री में जाने वाले लोगों के ऊपर ट्रैफिक पुलिस एक्शन ले रही है। अब तक ना तो 900 से ज्यादा रॉन्ग साइड और नो एंट्री में जाने वाले लोगों पर फाइन लगाया है और 6 लाख से भी ज्यादा फाइन वसूल किया है। आणि ही मुहिम ना तर आपल्या शहरातील जे महत्वाचे चौक तिथे सुरू आहे, मोंडा नाका, सीडी चौक, सेवन हिल, आकाशवाणी, जळगावटी पॉइंट, API कॉर्नर, हायकोर्ट सिग्नल, स्टेशन कोर्ट सिग्नल, बाराभाई ताजी, रंगार गली, मिलिंद चौक, नगर नाका, महावीर चौक, ओसिस चौक आणि वाळूस गाव, या ठिकाणी ना ही मोहीम सुरू केलेली आहे। आणि जर तुम्ही रॉंग साइडने गाडी चालवली तर प्रॉब्लेम तुम्हालाच होणार आहे, ट्रॅफिक जाम होतोय और कुछ कुछ लोग तो इतने ऍटिट्यूड में रॉंग साइड से गाडी चलाते हैं जैसे कि एकदम सही तरीके से गाडी चला रहे हो, और अगर किसी ने टोका ना तो फिर उनके साथ वो झगड़ा करते, भाई तेरे बाप करोड़ है, डायरेक्ट ऐसा कहते। जो रॉंग साइड से गाड़ी चलाता है ना, उसके बाप करोड़ होगा वो। जो समझदार इंसान होता है वो ऐसे रॉन्ग साइड से तो गाड़ी नहीं चलाता है। बाकी आप तो समझदार हो तो देखिएगा आपको राइट साइड से गाड़ी चलाना है या फिर रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाना है। रूल फॉलो कीजिएगा, ट्रैफिक अपने आप कम होगा, समझे? स्टे ट्यून्ड।

0: आज सुबह एक बहुत अजीब सा ख्याल आया, बहुत मतलब बहुत ही अजीब सा। मैसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। ख्याल कुछ ऐसा था कि सोचिए अगर बचपन बोल सकता तो शायद वो ऐसा कहता, मुझे बड़ा होने की इतनी भी जल्दी नहीं थी, मुझे भी स्कूल की घंटी सुननी थी, मुझे भी बारिश में कागज़ की कश्ती चलानी थी, मुझे भी दोस्तों के साथ बेवजह हंसना था, लेकिन किसी ने मेरे हाथ में खिलौने की जगह काम थमा दिया। दुनिया में दो तरह की सुबह होती है, एक वो जहाँ बच्चा उठकर स्कूल की तैयारी करता है और एक वो जहाँ बच्चा उठकर काम पर जाने की तैयारी करता है। दोनों की उम्र एक ही होती है लेकिन कहानी बिल्कुल अलग। 12 जून यानी कि आज का दिन वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये दिन हमें याद दिलाता है कि बचपन कोई लग्जरी नहीं, हर बच्चे का हक है। और शायद सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि एक बच्चा काम कर रहा है, सबसे बड़ा दुख ये है कि धीरे धीरे हमें उस मंजर की आदत हो गई है। सिग्नल पर फूल बेचता बच्चा, होटल में बर्तन साफ करता बच्चा, गैरेज में काम करता हुआ बच्चा, ये तस्वीरें हमें अब हैरान नहीं करती लेकिन हैरान करनी चाहिए। क्योंकि जब एक बच्चा अपने सपनों की उम्र में जिम्मेदारियां उठाने लगे तो समाज को खुद से सवाल पूछना चाहिए। आज एक छोटी सी बात याद रखिए, हर बच्चा जो काम कर रहा है वो मजदूर पैदा नहीं हुआ था, वो भी किसी सपने के साथ पैदा हुआ था। और उम्मीद करता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब किसी बच्चे से ये ना पूछना पड़े कि तुम क्या काम करते हो, बल्कि ये पूछा जाए बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। सो आज है वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे। स्टे ट्यून ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एमजीएम युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी।
2: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
1: पीजी, एमटेक इन एआय अँड एमएल, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये पीएचडी करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक।
2: ऍडमिशन्स ओपन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299।
1: अगं प्रिया ऐकलं का, 16 मे पासून जनगणनेचा दुसरा टप्पा सुरू झालाय।
3: हो, आणि मी तर स्वगणना केलीय, प्रगणक आले की त्यांना फक्त माझा ACID नंबर देणार।
1: आणि ज्यांनी स्वगणना केलेली नाही
3: त्यांना प्रगणकांच्या मोबाईल ऍप मधील प्रश्नांची उत्तरे देऊन माहिती द्यायची आहे। प्रगणकांना सहकार्य करूया आणि जबाबदार नागरिक बनूया।
1: जनगणना प्रगणकांना सहकार्य करा आणि आपली जबाबदारी पार पाडा। छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेद्वारा जनहितार्थ प्रसारित। क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
4: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक। डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
1: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 और 9665353515।
5: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
5: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट डब्ल्यू डब्ल्यू

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। स्कूल में हम सबके पास कोई ना कोई एक ऐसा टीचर जरूर होता है जिसका पढ़ाया हुआ चैप्टर शायद हम भूल जाए, लेकिन उससे कही हुई एक बात पूरी जिंदगी याद रहती है। एक लड़का था, पढ़ाई में बहुत साधारण, ना क्लास का टॉपर, ना किसी प्रतियोगिता का स्टार, यानी कि मेरे जैसे ही समझिएगा। कई बार कम नंबर आते तो लोग मजाक भी उड़ाते। धीरे धीरे उसे भी लगने लगा कि शायद वो दूसरों जितना अच्छा नहीं है। एक दिन परीक्षा के नतीजे आए, फिर से कम नंबर, पूरी क्लास के सामने उसे बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसकी क्लास टीचर उसके पास आई। उन्होंने डांटा नहीं, नहीं ये कहा कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, हर बच्चा किसी न किसी चीज में अच्छा होता है, तुम्हें बस अपनी जगह ढूंढनी है। उस दिन शायद वो लड़का उस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन उसने हार मानना छोड़ दिया। पढ़ाई के साथ साथ उसने अपनी दूसरी खूबियों पर भी ध्यान देना शुरू किया। बोलने में अच्छा था, लोगों से जुड़ने में अच्छा था, और धीरे धीरे उसी हुनर ने उसकी पहचान बना दी। सालों बाद जब वो अपनी जिंदगी में कुछ बन गया तो एक दिन उसी स्कूल गया, उस टीचर से मिला। टीचर ने मुस्कुराकर पूछा, पहचाना मुझे? लड़के ने कहा, मैडम अगर उस दिन आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया होता तो शायद मैं खुद पर कभी भरोसा नहीं कर पाता। सच तो ये है दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ी बड़ी सलाह नहीं चाहिए होती। कभी कभी किसी टीचर का एक छोटा सा विश्वास एक बच्चे की पूरी दुनिया बदल देता है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी टीचर है तो आज उन्हें एक थैंक यू जरूर कहिए, क्योंकि कुछ हीरो किताबों में नहीं क्लासरूम में मिलते हैं। किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग एमजीएम युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
2: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड बीबीए एलएलबी आणि 10वी नंतर 3 वर्षांचा एलएलबी हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी एलएलएम मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
1: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च एमजीएम युनिव्हर्सिटी।
3: फक्त इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय,
4: मग निवडा एमजीएम विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग। सोबत शिका एआय इन केमिकल इंजिनिअरिंग, एआय एमएल, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन।
3: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि एनईपी 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
4: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, एमएनसी कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप।
3: लिमिटेड सीट्स, आजच एमजीएम विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 9890-71-78-44।
5: ऍडमिशन ओपन एमजीएम युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर एचएससी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, आयओटी, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, सायबर सिक्युरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग, व्हीएलएसआय डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, रोबोटिक्स अँड ऑटोमेशन। फॉर ऍडमिशन व्हिजिट mgmu.ac.in और कॉन्टॅक्ट 9371714253 और विजिट एमजीएम कैंपस एन6 सिडको छत्रपति संभाजीनगर।

0: अक्सर हम रोते हैं कि यार हमारे बाल टूट रहे, कैसा होगा यार।
1: बहुत सारे लोग ना हेयर प्रॉब्लम से परेशान है, लेकिन इससे ही ना तो आप हजारों रुपए कमा सकते हो। जी हाँ, एक बिजनेस आइडिया बताओ आपको। You are listening MGM 90.8 FM. एक चीज मैंने बचपन में नोटिस की थी, जब मेरी मम्मी ना तो अपने बाल बनाती थी तो जो टूटते हैं ना बाल उसे एक कैरी बैग में जमा करके रखती थी। और आज भी बहुत सारे इंडियन फैमिली में ना तो ये एक रिचुअल चलता ही आ रहा है। इसके पीछे एक रीजन था। महीने में एक बार ना तो हमारे गली में एक बंदा आता था, केसन और फुगे, केसन और भांडे कुछ इस तरीके से वो चिल्लाता था। और फिर गली की जो भी लेडीज थी ना, तो एक महीना जो बाल उन्होंने जमा किए है वो उसे ला कर देते थे, उसके बदले फिर कुछ बर्तन वगैरह खरीदी करते थे। इस तरीके का ये जो ट्रेंड है ना, तब से लेकर आज तक अब सिटी में भी आ चुका है, सब तरफ चल रहा है। और यू नो व्हाट, एक रिपोर्ट के मुताबिक ना 1 किलो बाल की कीमत है 6,000 रुपए। अगर आपके पास भी 1 किलो बाल हो गए तो आप 6,000 रुपए कमा सकते हो। मतलब आपके सर पर ना हो तो उसकी कुछ कीमत नहीं है, अगर टूटे हुए हो ना, आपने एक जगह जमा की है तो उसकी कीमत है वो 6,000 रुपए। तो कौन कहता है कि यार बाल से पैसा नहीं कमाया जाता है। आई नो बाल जाने के बाद थोड़ा टेंशन तो आता है, लेकिन इनकम भी हो रही है ना, ये भी एक है भाई। खैर, दुनिया में कब कहां किस तरीके से पैसा कमाया जाए किसी को पता ही नहीं है, बस थोड़ा दिमाग होना चाहिए और एक नया बिजनेस आइडिया निकल जाता है। अब ये बात सुनकर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, यार ऐसा कौन करता है। दीदी और आंटी आप हंसिए मत, आप भी यही करते हो, आपके भी घर पर है ना ऐसे, आपने एक कैरी बैग में अपने बाल जमा करके रखे, केसन और फुगे अठोते नहीं लान पड़ी तो। भाई आइडिया तो अच्छी है, पैसा भी बहुत अच्छा मिलेगा। खैर, स्टे ट्यून्ड।

यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीना स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स, 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर।

0: 17th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन एमजीएम यूनिवर्सिटी में होने जा रही है। आइए इस बारे में जानते हैं ऑनरेबल वाइस चांसलर एमजीएम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर विलास सपकार जी से।
1: द 17th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट एमजीएम यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग 12th एंड 13th जून 2026। दिस कॉन्फ्रेंस इज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड विद ब्रिजवाटर स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए, हसन टू यूनिवर्सिटी मोरक्को, सिद्दी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी मोरक्को एंड टाफिला टेक्निकल यूनिवर्सिटी टाफिला जॉर्डन। एक्सपर्ट्स अक्रॉस द ग्लोब विल बी डेलिब्रेटिंग ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, रिसर्च इनोवेशन एंड पेडागॉजी एज वेल एज स्टार्टअप एंड इनोवेशंस फॉर यू। आई अपील ऑल स्टूडेंट फैकल्टी रिसर्चर्स स्कॉलर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस एंड टेक देयर नॉलेज टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सेलेंस।
0: 17th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन 2026 12th जून एंड 13th जून एट एमजीएम यूनिवर्सिटी छत्रपति संभाजीनगर।

0: जय ग्राम जय।
1: भैया क्या चाय कड़क है ना?
0: अरे साहब जी 90.8% चाय कड़क है।
2: सपने ये

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।